0: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी. सकाळचे 6 वाजत आहेत. ठीक 6 वाजता हिंदी समाचार दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होईल. आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत काही क्षणातच.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की.
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया. भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की. श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे. वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है. भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे. इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है. संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी. इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया. उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया. गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं. तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है. हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है. भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा है. कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है. निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं. पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है. नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की. पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है. इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाड़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है. IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया. मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया. प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। 103 मेगाहर्ट्स 103.6 मेगाहर्ट्स वर आकाशवाणी सिंधुदुर्ग नगरी केंद्र आणि AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनीवरून सुद्धा आपण आमचे कार्यक्रम ऐकत आहात। सकाळचे 6:05 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत भक्ती संगीताचा कार्यक्रम मंगल प्रभात। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया दत्तस्तोत्र।

0: परिसर हा कार्यक्रम आपण पुन्हा ऐकू शकाल आज दुपारी 2:10. आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीचं प्रसारण. सकाळचे 6:55 होत आहेत. ठीक 6:55 संस्कृत समाचार दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होईल. आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत काही क्षणातच.
1: इयम् आकाशवाणी. सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमम् अन्तिमं प्रचरणं सफलतया सम्पाद्य इटलीदेशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्. ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्. कृषिः, महत्वपूर्णखनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः. कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्. इटलीदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोमनगरे संयुक्तवक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहनक्षेत्रेषु नौकापत्तनानाम् आधुनिकीकरणे, रसदक्षेत्रे नीर अर्थव्यवस्थायाञ्च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं. हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है. मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है. हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे.
1: इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः. भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2000 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः. इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परम् अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति. सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः, अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति. प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्रमोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रिकोला पदकं प्रदत्तम्. पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषिवैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्. पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्. गृहमन्त्री अमितशाहः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रिकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः. गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति. पश्चिमबङ्गालराज्ये दक्षिणचतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मत

0: मतदानम् अधुना सप्तवादनतः आरभ्यते यद्धि सायं षड्वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य षड् प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी, सकाळचे ठीक 7 वाजले आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम ऐसी अक्षरे रसिके।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातरेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति बद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के

0: प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
4: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
0: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी

0: सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी, चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit

0: उषा मंगेशकर यांनी गायलेलं बन्या बापू या चित्रपटातील गीत आपण ऐकलं. गीतरचना होती मुरलीधर गोडे यांची आणि संगीत दिलं होतं ऋषीराज यांनी.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक. होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
2: QR कोड स्कैन करा 5000 का कैशबैक मिलवा, वाह दिवस वसूल झाला.
3: फसला UPI पिन एंटरिंग फक्त पैसे पाठवण्यासाठी.
4: RBI सांगते
3: जाणकार बना, सतर्क रहा.

0: एलर्जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
1: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
1: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: जी,
1: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
2: जी,
1: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
2: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओ, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
2: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी

0: बड़ी नदियां बनाती हैं,
1: जी
0: कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोलावनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं, इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल

कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे।

अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।
3: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
4: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: सुनो
1: दादी माँ, सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ, सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन।

0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ, एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन। लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं।

0: साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
0: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
2: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?

0: हाँ, क्यों नहीं। राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
0: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे फिर दादी माँ?
0: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
0: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर
0: अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
5: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
6: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
7: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
6: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
7: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।

0: अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़।
1: इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
2: बिल्कुल सही कहा अटकू।
3: इसे काट।
4: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
3: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं।
5: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
6: रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
1: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
3: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
5: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
3: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
1: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
5: वो उसे काटने लगे।
4: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
1: अच्छा ठीक है
3: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
5: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
6: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
3: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
5: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
7: अरे वाह अटकू मटकू,
5: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
1: पेड़ हमारे
8: दोस्त हैं।
1: जीवन में हरियाली लाओ,
8: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
9: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
10: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग।
12: NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून। श्रोतेहो 537.6 meters अर्थात 558 kHz हे आहे आकाशवाणीचं मुंबई केंद्र आणि आपण ऐकत आहात अस्मिता वाहिनीचं प्रसारण। आमचे कार्यक्रम आपण AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर देखील ऐकू शकता। सकाळचे 10 वाजले आहेत। गीतबहार हा चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम आता प्रसारित करीत आहोत। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया आम्ही दोघे राजा राणी या चित्रपटासाठी

0: भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि यह निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में आज मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार में 23 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। इनमें 3 नई महिला मंत्री भी शामिल हैं। सरकार में पहले से ही 9 मंत्री हैं, जिनमें एक महिला मंत्री सुश्री कीर्तना भी शामिल हैं। अब कैबिनेट में कुल 32 मंत्री हो जाएंगे, जिनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी शामिल हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर चेन्नई के लोकभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 627 अंक की उछाल के साथ 75,945, जबकि निफ्टी 200 अंक बढ़कर 23,859 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी आपण ऐकत आहात। सकाळचे 11:05 झाली आहेत। ऐकूया कार्यक्रम स्वरसंवाद।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आता ऐकूया कार्यक्रम भावधारा। सुधाकर कुलकर्णी यांचं गीत ऐकूया। गायक आणि संगीतकार आहेत भूमानंद बोगम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन

0: चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी आपण ऐकत आहात। आमचे कार्यक्रम AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर देखील उपलब्ध आहेत। दुपारचे 1:05 झाली आहेत। ऐकूया चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीत बहार। भिंतीला कान असतात या चित्रपटातलं गीत ऐकूया। गीतकार आहेत गदी माडगुळकर, गायक आणि संगीतकार आहेत सुधीर फडके।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कशासाठी प्रेमासाठी या चित्रपटातलं सुरेश वाडकर आणि उत्तरा केळकर आणि सहकाऱ्यांनी गायलेलं गीत ऐकूया। गीतकार आणि संगीतकार आहेत सुधीर मोघे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति

0: और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत एवं कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
3: India has recently launched
4: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
3: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों स्थानों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल

0: बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में 4th स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत के हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया।

0: किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी आपण ऐकत आहात। दुपारचे 2:30 वाजले आहेत। नादब्रह्म अंतर्गत आता प्रसारित करत आहोत उत्तरा चौसाळकर यांचं गायन राग मूलतानी। विलंबित आणि द्रुत बंदिश एक तालात निभत आहे। विलंबित बंदिशीचे बोल आहेत जागो को मन अल्लाह संग। द्रुत बंदिशीचे बोल आहेत बलमा मोरी तुम्ही सो लागी प्रीत। त्यांना तबला साथ संतोष मिश्रा आणि हार्मोनियम साथ जयंत फडके यांनी केली आहे। ऐकूया तर उत्तरा चौसाळकर यांचं गायन राग मूलतानी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG with refineries operating at optimum capacity to meet the demand. LPG production has been ramped up and every day around 46 to 47,000 tons of LPG are produced in refineries. Addressing an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that supply remains stable and steps have been taken to ensure availability across all petrol pumps. Supply of LPG for cooking purposes is stable, and in the last 3 days, delivery of 1 crore 34 lakh domestic LPG cylinders has been made, while the supply of commercial LPG remained 1 lakh 32,000 tons since 1st of this month. Additional Secretary in the Ministry of Port, Shipping and Waterways, Mukesh Mangal, said they are continuously coordinating with the Minister of External Affairs, Indian Missions and maritime stakeholders to ensure the safety of seafarers and smooth maritime operations. India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed the commitment to cooperate on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity and prosperity. Appreciating the preliminary discussions around the project, they encouraged the first IMEC ministerial meeting to take concrete steps for advancing this initiative in 2026. Union Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that India has presented a new model to the world by increasing agricultural production, strengthening food security and bringing positive changes in the lives of millions of farmers. Expressing happiness over the conferment of Food and Agriculture Organization FAO Agricola Medal to Prime Minister Narendra Modi in Rome, Mr. Chauhan said that this honor is a symbol of the growing prestige of New India. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that India's GDP upgraded from 6.4 to 6.5% in the middle of global crisis, demonstrating the capability of 1.4 billion Indians. Addressing the AmCham's annual leadership summit in New Delhi, the minister said that this achievement reflects the country's growing ability to engage with the world from a position of strength with confidence. Railway Minister Ashwini Vaishnav today held a high-level security review meeting in New Delhi with field officers. During the meeting, it was noted that preliminary investigations into several recent fire incidents in trains have revealed the involvement of anti-social elements. The ministry said that such incidents have been taken up seriously and the Railway Protection Force is actively probing them. The discussions during the security review meeting focused on strengthening intelligence gathering mechanisms from the field through an improved reporting system. Emphasis was also laid on enhancing technology-driven security systems, expanding CCTV coverage across the railway network, and improving operational security. The meeting also highlighted strengthening cyber security, upgrading camera specifications, and deploying AI-based surveillance and monitoring systems. India's call for united global efforts to combat terrorism in all its forms, including cross-border terror. Addressing the 11th annual BRICS Counter-Terrorism Working Group meeting in New Delhi today, Minister of External Affairs Secretary West C.B. George stressed the need to hold accountable those sheltering and supporting terrorism. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

0: यम अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स तथा चेन्नई सुपर किंग्स दलयोः मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा च तस्य इटली समकक्षीया जॉर्जिया मेलोनी इत्येतौ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर इत्यत्र सहकार्याय स्वकीय प्रतिबद्धतां ज्ञापितवन्तौ। अस्याः परियोजनायाः भूरिशः प्रशंसां कुर्वन्तौ उभौ नेतारौ ऐषमः 26,000+ अस्य उपक्रमस्य प्रगतये ऐमेक मन्त्रिस्तरीय गोष्ठ्याः प्रथमायोजने दृढपदक्षेपं स्वीकर्तुं प्रोत्साहितवन्तौ। रोमनगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह आयोजिते संयुक्त संवाददातृ सम्मेलने इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी आईमेक इत्येतं यूरोप मध्य पूर्व भारतदेशान् संयोजयितुं कश्चन महान् आर्थिक सम्पर्क मार्गः वर्तते इति वर्णितवती। तया प्रोक्तं यदस्मिन् व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखला स्थैर्यं दृढीकर्तुं महत् सामर्थ्यं वर्तते। मेलोनी इत्येषा अवोचत् यत् क्षेत्रीयान्तर सम्पर्कस्य सुदृढीकरणार्थं सर्वोपरि प्राथमिकता अस्ति तथा च उभावपि देशौ अस्य वीथिमार्गस्य विकासं दृढतया समर्थयतः। उभावपि प्रधानमन्त्रिणौ पुनरपि प्रोक्तवन्तौ यत् नवोन्मेषः विज्ञानं प्रौद्योगिकी च भारत इटली देशयोः मूलाधाराः सन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् इटली देशः स्वस्य विशिष्टाभिकल्पनायै सूक्ष्मता कौशलाय च विश्वविश्रुतोऽस्ति। अपरत्र भारतस्य ख्यातिः विशालतायै प्रतिभायै सुलभ नवोन्मेषाय च वर्तते।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: सर्वकारेण प्रोक्तं यत् कस्यापि सौन्दर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिकाभेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौन्दर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषिद्धो वर्तते। केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् प्रसाधन सामग्र्यः केवलं मानव शरीरे घर्षणाय सेचनाय प्रोक्षणाय अथवा विकिरणाय च उद्दिष्टाः सन्ति। संघटनेन प्रोक्तं यत् विक्रयण वितरणार्थं प्रसाधनानां निर्माणं तथा च आयात प्रक्रिया प्रसाधन नियम 20/20 इत्यस्य प्रावधानैः नियन्त्रिता भवति। CDSCO इत्यनेन दृढीकृतं यत् प्रसाधनोत्पन्नेषु प्रतिबन्धित तत्त्वानाम् उपयोगः नामपत्रे भ्रामकोक्तिः संक्रमणोपचारार्थं सौन्दर्य प्रसाधनानां प्रयोगः तथा च सूचिका भेषज माध्यमेन एतेषाम् अनुप्रयोगः औषध तथा प्रसाधन अधिनियमन नियमानां गंभीरं उल्लंघनं मन्यते यस्य कृते दण्डविधानं निश्चितं वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयेन इबोला संक्रमणेन प्रभावितेभ्यः देशेभ्यः आगम्यमानानां अथवा तन्मार्गेण गच्छतां यात्रिणां कृते कश्चन विशेष स्वास्थ्य परामर्शः प्रसारितः। स्वास्थ्य परामर्शानुसारं ये यात्रिणः कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्यं युगांडा तथा दक्षिण सुडान सदृशेषु उच्च संकट युक्तेषु देशेषु भ्रमणं कृतवन्तः तथा च येषु ज्वरः शिरोवेदना पीडा अनिर्धारित रक्तस्रावः वमनञ्चेत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते ते सद्य एव चिकित्सकीय सहायतां प्राप्तुं साग्र

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाश

वाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे

0: वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरून.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक. होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
0: श्रोते हो, मुलांना शिकवणं हे मुळातच अवघड काम असतं. त्यातून ती मुलं विशेष प्रकारची असतील तर त्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाबरोबरच सामाजिक उत्तरदायित्वाची भावना आणि समर्पित वृत्ती असणंही गरजेची असते. कर्णबधीर मुलांसाठी शाळा चालवणाऱ्या वर्षा वैद्य यांच्या संवादातून आपल्याला हेच जाणवेल.
2: माझी देवाकडे हीच प्रार्थना आहे की आम्हाला जेवढी अंगात ताकद आहे तोपर्यंत आम्हाला ही अशीच मुलं घडवण्याची ताकद देव आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर जे आम्ही हसू आणू शकतोय, त्यांच्या पालकांवर जो चेहऱ्यावर आनंद येतोय तो आनंद असाच त्यांचा टिकून राहतो.
0: अवश्य ऐका दायित्व समाजाचे वर्षा वैद्य यांची मुलाखत मंगळवारी 26 मे रोजी दुपारी 12 वाजता वनिता मंडळात अस्मिता वाहिनीसह महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रांवर तसंच न्यूज ऑन एअर ॲपवरही.

0: रसिका कसबे यांनी गायलेली सुरेश भट यांची ही रचना होती. याबरोबरच भावधारा कार्यक्रम संपला. आकाशवाणी मुंबईची अस्मिता वाहिनी आपण ऐकत आहात. आता थोड्याच वेळात समाचार संध्या, न्यूज ॲट 9, स्पॉटलाईट हे कार्यक्रम दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करणार आहोत. आणि 9:30 वाजता कंट्री वाईड, 9:45 आणि इनसाईट्स हे कार्यक्रम दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करू.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी. कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया. सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया. केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया. भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया. और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है. उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए. यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई. संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है. इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई.
2: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की.
3: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है. इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है. प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है.
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया. श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं. नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
4: अमेरिका एंड इंडिया,
5: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
4: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम

0: ओडिशा की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
2: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी।

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक। डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है।
2: हीट वेव जो हमारे समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का, और जो हम डिपार्चर जैसे आज का टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में, जून महीने में, अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिवेल करता है।
1: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हम इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?
2: अभी जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं, और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा। बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है। काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा। सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो काल था, काल बांडा में ईस्ट उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री। तो ये एक बेल्ट है जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एरिया में भी, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्ट एरिया, कर्नाटक कोस्ट एरिया, वहाँ थोड़ा नहीं है, बाकी लगभग बहुत जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का अगर हीट वेव का जारी किया गया है इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व क्या है और इन चेतावनियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
2: हीट वेव भी आजकल स्लो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव पे चलते बहुत सारे कैजुअल्टी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है वो ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग उसको बोलते हैं, कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें 4 कलर जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 4 कलर में देते हैं। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहाँ येलो है तो थोड़ा

0: सावधान होना पड़ेगा, येलो मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है। एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो जो भी एक्शन है, बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना है, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइंस होता है कि ऐसे ऐसा स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, एनडीए में या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो बताते हैं, यही हम कलर कोड वार्निंग दे के उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देख के उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
1: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से, और इसमें जो इसकी अवधि होती है और तीव्रता होती है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
0: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं? हमारे जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम लास्ट पिछले 30-40 साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड बोलते जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में, जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है, उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है, यानी थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
1: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है, किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें करने की जरूरत है?
0: देश के बहुत जगह में अभी हमारा हीट वेव का प्रभाव है, ज्यादातर प्रभाव जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये तीन राज्य जो है मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का भी वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं है, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर भी दिए हुए हैं, देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा, धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ से दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
1: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
0: हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है, हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे, दिल्ली में क्या है आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह में 48 डिग्री भी हो रहा है, तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब कि एक दिन के अंदर, आज ये शाम को 4 बजे के बाद किया होगा, 6 बजे के बाद किया होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हैवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है उसको हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने AIML का टेक्निक टूल भी हम उसमें लगा के उसे हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
1: अगर शहरों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं?
0: हाँ, अर्बन हीट आइलैंड ज्यादा का शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव करता है, दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, तो आपको लगेगा कि सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, 2-4 डिग्री का ज्यादा होगा उसे बाहर से, तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा, और उसके लिए बहुत कारण है कि आपका जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका AC है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
1: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां पर हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
0: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहला स्टार्ट हुआ, बहुत सारे स्टेट राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो IMD की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा, तो उसके बाद उन्होंने प्लान के

0: में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है, तैयारी करेंगे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान। तो ये हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है। ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
1: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है, खेतों में काम भी करना और अपने आप को भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है। तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
0: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का इतना वो करना चाहिए, जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे, इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी हम देख रहे हैं कि कई बार ये हमें सुनने में आता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया या इस रिकॉर्ड को पार कर गया, पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो इसके पीछे स्थानीय मौसम की भूमिका होती है परिस्थितियों की, या फिर कोई वाह इफेक्ट की बात होती है जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है?
0: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली, दिल्ली का तो हर साल में तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर के कारण काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है, लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से ज्यादा बहुत दिन हो रहा है, तो इसके चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए हमको एक्सट्रीम रेट बोलते हैं। वो ऑलरेडी हर मंथ का हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे यस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसे कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा, आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है, एलिनो के कारण तो आपका मानसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है और थोड़ा हीट वेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण, बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है, तो उसके चलते ये जो सीजन में है उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल के भी ऊपर निर्भर करता है।
1: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: मॉनसून का IMD फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन कैसा रहेगा, जो कि अप्रैल में हमने 13 तारीख अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है, एलिनो पहले बताया कि एलिनो जो है मॉनसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकाता है, मतलब मॉनसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जून में वीक एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सितंबर में मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एलिनो होगा, ये हमारा जो फोरकास्ट, उसके चलते हमने मानसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आंकलन किया है जो कि 92% जो दिया गया है, तो इसलिए एलिनो के चलते मानसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और इसका जानकारी हमने पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सभी को 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
1: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
0: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि जिस स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया ये सब सारा, तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं, लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है जिसको हम बिलो नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारणतः ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, इसमें तो साउथ में तो कम होने का चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का कुछ पार्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। ये जनरल पैटर्न है। पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
1: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में खासतौर पर हीट वेव की परिस्थितियों में अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सके।
0: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जो जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े। एंड पानी सफिशिएंट पीना चाहिए, ये सबसे बड़ा मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहिए, क्या क्या करोगे एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है। एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैले उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
1: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
0: मौसम विभाग तो हम सारे अपडेट करते रहते हैं, हम जो परिस्थिति है जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, और अगले 7 दिन तक हम बता रहे हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउ कास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान देके आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
1: डॉक्टर पटनायक इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप 2 में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नादब्रह्म या शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमात आत्ताच आपण उस्ताद फारूक लतीफ खान यांचं सारंगी वादन ऐकलं. आपण ऐकलात राग सरस्वती. त्यांना तबला साथ केली होती प्रसून चॅटर्जी यांनी. आणि हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनीवरून. न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवरही आपण आमचे कार्यक्रम ऐकू शकता.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक. होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1900

0: अचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: वेगाच्या वेडानं पाखरू गडप होत, एका चुकीमुळे आयुष्य दूर जात। मद्यपान करून गाडी नको रे धरू, आईबाबांची स्वप्न नको भंग करू। झेब्रा पट्टीवर थांब रे जरा, आपलेच लोक वाट पाहती घरा। जीवन अनमोल आहे, वेग टाळा, सुरक्षित प्रवास हाच खरा।

0: रसिक हो, चांदण्या रात्री अंगणात स्वरांची पावलं उमटतात आणि त्यांच्या स्वागताला शब्द प्रगटतात. कल्पनाच किती रम्य आहे नाही? आणि हीच कल्पना रंगवली आहे कवी सदानंद डबीर यांनी स्वरांजली या सुगम संगीताच्या विशेष कार्यक्रमात या महिन्याच्या गीतात. संगीतकार आरोही आगरकर यांचं संगीत सुरेलपणे साकारलंय गायक कलाकार श्रीरंग भावे आणि भाग्यश्री पांचाळे यांनी. अवश्य ऐका मे महिन्यात दर शनिवारी सकाळी 9:30 वाजता सुगम संगीताचा विशेष कार्यक्रम स्वरांजली आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर. स्वरांजली.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.

0: नादब्रह्म या शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांतर्गत आत्ताच आपण शरद गोखले यांचं शास्त्रीय गायन ऐकलं. आपण ऐकलात राग हिंडोल. त्यांना तबला साथ केली होती दिलशाद खान यांनी, हार्मोनियमवर साथ गुरुदत्त हेबेळकर यांची, आणि सारंगीवर साथ होती लियाकत अली खान यांची. हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनीवरून. आपण आमचे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर देखील ऐकू शकता.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
2: शेतकरी बंधूंनो, माझा आवार माझा शिवार या राज्यस्तरीय कृषी विषयक कार्यक्रमात 22 मे 2026 शुक्रवार रोजी संध्याकाळी 7:30 आपण ऐकू शकाल शाश्वत शेतीसाठी खरीप हंगामाचे नियोजन या विषयी डॉक्टर आनंद कारले यांची वैशाली वांगीकर यांनी घेतलेली मुलाखत. तेव्हा जरूर ऐका माझा आवार माझा शिवार हा राज्यस्तरीय कृषी विषयक कार्यक्रम आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून.